0: भरला बर ना आई बेंदर खकिरिया पंबा
1: ये काय
0: ना दोला काय
1: खकिरे कांग
2: खकिरे दु वंगर दु
0: हा खकिरे बत
1: दोला खकिरे गे ने जी दोला मन खकिरे जुंदे
2: दो तुले दम गे
1: द दमे ए
2: ओरे को को जावा
0: एते रोग नमय ये ना केला ना इतिन वार वार केल दाइन गोरन दराले नमा एते रोग सु दाइन अलदी कांग ना कोला संका माइंडिंग असकी केने दाइन अलदी ला करी वला ओला अंगी तिर पुरतानी ना किंगल जम को दोंगा बनी
1: दोमी मेजरम बैंक की बोराई कैंकल जम को आइसा केल बम दोंगा के कैंडिडेट दिन दियो अलन दाइन ओलन दिले पागो ना नेडिंग खकिरे बंग ना स्काइम बेले nga sursawa na kente nga kabung na jurunga des kanyi anang kiking tabungko.
0: Tule.
2: Bara dimbele jamaili ka enami orre kwa to kiro kinga dayang goren darale asangkai utuang tabungkare na ka ule lam kile tulende barik na skai utuang kultara asangkailbam asangkailkai mparangase bago.
0: Tule. Na ini kankil jam kwa namain etirikaring na to dayang tamulintak dikkel kam namang kinga nagal dayang aldilikari.